0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि भारत का आकार और वैश्विक महत्व एक विस्तारित सुरक्षा परिषद में इसके समावेश को आवश्यक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया।

विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भी भारत और लक्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लक्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने नई दिल्ली के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 40 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान के एजेदा सेदान से होगा, वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लगीन झालं गोंधळ झाला, आता एक काम हो उरलं,
1: आता आणि काय उरलं.

成

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
2: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे 3 मुख्य खंडों को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू साड़न, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू JNPT से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात और मध्य प्रदेश के कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की 3 रेल परियोजनाएं और 1,780 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कडाणा बांध पर 110 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए AI सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
3: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तार

0: सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
1: श्री बेटन ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटन ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में दो तिहाई बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटन ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्कन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमेरिकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को निलंबित किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा

0: एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में अगले 2 दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
1: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में राम गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी जनपद पदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई DAC की बैठक, 1,00,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक दिया है, पीएम मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग 1 घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार हथियारे पीजी का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, हाईकोर्ट के निर्देश, जांच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, MCD अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा, 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, होर्मुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए कॉरिडोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमरीका और

0: Lani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक मुंबई. 8:40 और 45 सेकंड और 8 सितंबर 2026 और दिन है मंगलवार का और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर कार्यक्रम होगा मस्त मुंबई और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान. खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. तो चलिए आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत से और जैसा कि हमारे सभी लिसनर्स को पहले से अंदाज़ा लग जाता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, आज संगीत की दुनिया की एक बहुत बड़ी हस्ती की बर्थ एनिवर्सरी है. जी हाँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जानते हों, तो चलिए व्हाट्सएप के ज़रिए बताएं आज हिंदी सिनेमा की किस बड़ी हस्ती की, जी हाँ संगीत की दुनिया की बहुत बड़ी हस्ती की बर्थ एनिवर्सरी है. जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप के ज़रिए हमें उनका नाम भेज दें. तो चलिए पहला गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत और नाम बाद में बताएंगे.

0: जी हाँ, मुंबई सिटी 8:55 और 40 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान। और तीन गाने मैंने आपको सुनवाए और हमारे सभी लिसनर्स को आई थिंक पहले से ही आइडिया था कि आज किस हस्ती की बर्थ एनिवर्सरी है। जी हाँ, ऑल टाइम ग्रेट सिंगर आशा भोसले जी, जिन्हें बहुत ही प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ लोग आशा ताई भी कहते रहे हैं। तो 8 सितंबर 1933 को सांगली में उनका जन्म हुआ था और जन्म के समय उनका नाम रखा गया था आशा मंगेशकर। उन्होंने कितना सारा काम किया और कमाल का काम किया हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, उसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। भारत सरकार ने 2008 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आया। इस रिकॉर्ड बुक में नाम आना कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि 1943 में उन्होंने पहली बार मराठी फिल्म के लिए गाना गाया था और उस समय उनकी उम्र थी सिर्फ 10 साल। जी हाँ दोस्तों, 10 साल। 10 साल की उम्र में यानी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। 2000 में भारत सरकार ने भारतीय फिल्मों का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, उस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया। दो बार दोस्तों उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1981 में उमराव जान के लिए और 1987 में इजाजत फिल्म के लिए। उमराव जान, कितनी सारी खूबसूरत गज़लें उन्होंने गाई और खयाम साहब ने जो उनके साथ एक नया एक्सपेरिमेंट किया था, एक नए अंदाज में, नए ढंग से उन्हें पेश किया था और वो प्रयोग कितना कामयाब रहा, यानी उन्हें भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। उससे पहले ऐसा माना जाता था कि आशा जी की आवाज़ गज़लों के लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन आशा जी ने सबको गलत साबित कर दिया। और 1987 में जब इजाज़त फिल्म आई, जिसका संगीत दिया था पंचम दाने यानी आर डी बर्मन साहब ने, और किस तरह के लिरिक्स थे, गुलजार साहब ने कहते हैं कि कविता में नहीं बल्कि शायरी में नहीं, प्रोज में उस फिल्म के लिए गाने लिखे थे, और बर्मन दादा ने कैसे खूबसूरत संगीत दिया और आशा जी ने बिल्कुल नए अंदाज में उन्हें गाया, और एक बार फिर से उनके करियर को एक बहुत बड़ा पुश मिला और उन गानों के लिए उन्हें भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। और उसके बाद रंगीला की कहानी सब जानते हैं। रंगीला में एआर रहमान साहब ने, यानी कह सकते हैं कि एक नई पीढ़ी के इतने बड़े, इतने कामयाब संगीतकार ने उन्हें बिल्कुल एक नए ढंग से प्रेजेंट कर दिया। यानी तीन फिल्में आप देख सकते हैं, पहली उमराव जान, फिर इजाज़त और तीसरी रंगीला। आशा जी ने एक ऐसा धमाका कर दिया था रंगीला के गानों के ज़रिए कि नई पीढ़ी भी दोस्तों चौंक गई थी। और 2013 में उन्होंने एक्टिंग में कदम रखा और एक फिल्म की माई, ये फिल्म हिंदी में थी और इस फिल्म के लिए भी उन्हें बहुत सारी तारीफ मिली थी। तो दोस्तों आज हम इस कार्यक्रम के ज़रिए आशा जी को याद करेंगे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे और उन्हीं की फिल्मों के गाने हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद, सुनते रहिए एफएम रेनबो।
1: अपनी पसंद की कोई भी कार ले, कॉस्मोस कार लोन है ना?
2: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
1: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
2: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।
3: अंकोर वाट विष्णुधाम कंबोडिया हेरिटेज यात्रा, विश्वातील सर्वात मोठ्या मंदिराची एक अद्भुत अनुभूती।
4: 2-10 डिसेंबर 2026, इतिहास, संस्कृति, वारसा, मंदिर स्थापत्य आणि परंपरा यांचा अनोखा संगम।
3: अंकुर थॉम, बयॉन, बांटी श्री सह 14 मंदिरे, नॅशनल म्युझियम, टोनले सॅप आणि विशेष आकर्षण अप्सरा नृत्य।
4: सोबत प्रख्यात लेखक व मंदिर स्थापत्य तज्ञ प्राध्यापक क्षितिज पाटुकले, शाकाहारी भोजन, 5-स्टार हॉटेल्स, आतापर्यंत 1200 अधिक जणांची कंबोडिया भेट।
3: विमान प्रवास, व्हिसा, सर्व खर्चासह 15 सप्टेंबर पर्यंत विशेष पॅकेज 1,40,000 रुपये फक्त।
4: ऑनलाइन बुकिंग साठी कंबोडिया अंकोर फाउंडेशन डोंबिवली, संपर्कासाठी फोन 98-21-40-38-38।
5: फोन पुन्हा एकदा 98-21-40-38-38।

जी हाँ दोस्तों, 9:11 और 21 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई, और जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स को आज पहले से पूरा अंदाज़ा था कि आज किस हस्ती का की बर्थ एनिवर्सरी है। तो चलिए, उनके नाम लेना मेरी ड्यूटी है और उनके नाम मुझे लेने ही पड़ते हैं, नहीं तो आप लोग बुरा मान जाते हैं। तो मानखुर्द से प्रणव शिंदे, प्रकाश शिंदे, ग्रांट रोड से फिरोज सिंह अनपुरिया जी, प्रमोद चिंचोलकर जी, विजेंद्र घाटोल, मंगेश जोशी, लोकेश, मृदुला जोशी, अरुण घोगले, महेश बोरा, मंजूषा ओक और राघवी झेम से, साथ ही साथ इसके अलावा हैं मंगला मुकुंद पठारे, अंधेरी वेस्ट से, डीएन नगर से प्रसन्ना चक्रवर्ती, मुलुंड से वैदेही जी, नेरुल से, और इन सभी ने सही जवाब दिया है। साथ ही साथ भालचंद्र फाटक जी और कुछ लोगों ने सही जवाब दिया लेकिन उनके नाम मेरे पास नहीं आए हैं। आरएन सोनी जी जयपुर से, और पंकज माहौड़ अमरावती से, कल्पना राजू उल्लासनगर से, दिलीप पाटिल, सुरेश बावकर और तनुजा शर्मा अंधेरी से, लाली झा अजमेर से और सुंदरी ठाकुर उज्जैन से। आप सभी के आंसर एकदम सही हैं। आज जिस हस्ती की बर्थ एनिवर्सरी है उनका नाम है आशा भोसले, और प्रेम के साथ, सम्मान के साथ हम सभी उन्हें आशा ताई भी कहते हैं। तो चलिए, अगला गीत पेश करने से पहले एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद अगला गीत आपको सुनवाएंगे। सुनते रहिए FM रेनबो।

0: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
1: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
0: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध। कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि।
1: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, मुंबई सिटी 9:26 और 22 सेकंड और तोरा मन दर्पण कहलाए, आशा जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गीत, और जहाँ वो डांसिंग नंबर्स बहुत ही खूबसूरती के साथ गाया करती थी, वहीं जब भी उन्होंने भजनों को गाया या गज़लों को गाया तो उनका तब भी कोई जवाब नहीं था। मैं आपको

करना चाहता हूँ संगीत की दुनिया की एक और बहुत बड़ी हस्ती की आज बर्थ एनिवर्सरी है और उनका नाम है भूपेन कुमार हजारिका। जी हाँ, 8 सितंबर 1926 को आसाम में इनका जन्म हुआ। ये सिंगर थे, राइटर थे, फिल्म मेकर थे, राजनेता थे, न जाने क्या क्या थे। एक इंसान के अंदर इतना टैलेंट हो सकता है, ये एक उसकी बहुत बड़ी मिसाल थे। आसाम, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में ये बहुत ही पॉपुलर थे। इन्होंने अपना ज़्यादातर काम आसामी भाषा और बंगाली भाषा में किया। 1975 में नेशनल अवार्ड इन्हें दिया गया, फिल्म थी चमेली मेम साहब, और 1992 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया। 2019 में उनके निधन के बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो चलिए, आज आशा जी के नाम है ये हमारा समय और उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं, याद करते हैं।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India

जी हाँ, मुंबई सिटी, कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम। और हम भी पूरे दिल से, पूरी मोहब्बत से कहना चाहते हैं कि हम आपका दामन, यानी हमारे सुनने वालों का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। आपका हमारा रिश्ता मोहब्बत का है, दिल का है, संगीत का है, और ये हमेशा हर पल और मजबूत होता रहेगा FM रेनबो के ज़रिए। तो दोस्तों, 9:36 हो चुके हैं और 8 सितंबर का आज दिन है। आज एक और ख़ास दिन है। जी हाँ, थोड़ा गेस करने की कोशिश करें और अगर आपको समझ में आता है तो मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए बताएं। पहले गांवों में अक्सर ऐसा होता था कि जब भी डाकिया किसी की चिट्ठी या तार लेकर आता था तो लोग, यानी गांव में जो भी लोग होते थे, बुज़ुर्ग होते थे, कोई अम्मा, काका या चाचा या भाभी होती थी, तो वो क्या करते थे, उसी डाकिये से कहते थे कि भैया

जरा इस चिट्ठी को पढ़कर बता दो, इसमें क्या लिखा है, इसे किसने भेजा है, ये कहाँ से आई है, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। जी हाँ, वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसलिए डाकिये से ही अपनी चिट्ठी पढ़वा लिया करते थे। अभी कुछ दिन पहले मुंबई में भी ऐसा कभी कभी हो जाता है, अंधेरी वेस्ट में मुझे एक लड़का मिला, कहने लगा सर ये एड्रेस बताएंगे। उसके हाथ में दोस्तों एक कागज़ का टुकड़ा था। मैंने कहा बताओ क्या है भाई, तो वो कहने लगा आप ही पढ़ लीजिए। मैंने कहा क्यों, तो कहने लगा मुझे पढ़ना नहीं आता है। जैसे ही मैंने वो एड्रेस पढ़ा, मैंने कहा ये सामने जो बोर्ड लगा है रोड के उस तरफ, तुम्हें उधर ही जाना है। तो वो कहने लगा यहाँ पर तो सर बहुत सारे बोर्ड्स लगे हैं, और इतने सारे बोर्ड्स लगे हैं मैं कैसे समझूं मुझे कहाँ जाना है, कौन सा बोर्ड है, उस बोर्ड का कौन सा रंग है, आप मुझे बता दें तो मैं जा सकता हूँ, क्योंकि वो लड़का पढ़ा लिखा नहीं था। दोस्तों मतलब साफ़ है कि ज़िंदगी में पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है, एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। हमारी किताबों में भी लिखा है विद्या वहीना पशु भी समाना, यानी जिस इंसान के पास विद्या नहीं है, शिक्षा नहीं है, उसका जीवन कैसा हो जाता है। एनीवे, इसके बारे में अगर आप व्हाट्सएप के ज़रिए कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। फ़िलहाल सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और आज हम ऑल टाइम ग्रेट सिंगर आशाताई की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगला गीत रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ें।

जी हाँ, मुंबई सिटी 9:45 और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजी रविन चौहान। और दोस्तों, कहना चाहता हूँ कि अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत आशा भोसले और शमशाद बेगम की युगलबंदी है, और बहुत मोहब्बत से सुनिएगा। इस गाने के ज़रिए मैं आपको कुछ भेज रहा हूँ, जी हाँ, कजरा मोहब्बत वाला, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

जी हाँ, मुंबई सिटी कजरा मोहब्बत वाला आप तक ज़रूर पहुंच गया होगा। और आप सुन रहे हैं FM रेनबो यानी 107.1 MHz पर। और हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जिन्होंने बताया कि आज वर्ल्ड लिटरेसी डे है, जिनके नाम हैं किशोर नायक, प्रमोद चिंचोलकर जी, प्रणव शिंदे दादर से बाबा, और स्नेहा वर्ली से, महेश बोरा राजस्थान से, राकेश माथुर जी पुणे से, और महेश भाटकर जी सेंटा क्रूज से, चेतन कुमार बिहार से, फिरोज सिंगनपुरिया जी ग्रांट रोड से, संयोगिता चौहान इंदौर से, और तनुजा शर्मा अंधेरी वेस्ट से। तो चलिए सुनते रहिए FM रेनबो। और आशा जी के ही दो गाने मैं बैक टू बैक आपको सुनवा रहा हूँ, और इसके बाद होंगे समाचार, और इसी के साथ ये जो स्लॉट है यानी मस्त मुंबई ख़त्म होता है।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: Welcome back Mumbai. आप सुन रहे हैं FM Rainbow यानी 107.1 MHz पर. अभी आप सुनेंगे मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे. गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे. महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक चलेगा. आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है. इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि साक्षरता ज्ञान, अवसर और बेहतर भविष्य का रास्ता खोलती है. अंत में खेल. अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में चुनौती पेश करेगा. भारतीय महिला पैरा रिकवर्स टीम फाइनल में चीन से खेलेगी. आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस. सुनते रहिए FM Rainbow.

वेलकम बैक मुंबई। 10:03 और 21 सेकंड हो चुके हैं और आपका अपना चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम होगा नमस्ते भारत, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजी रविन चौहान। हिंदी सिनेमा की एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत महान सिंगर आशा ताई जी की आज बर्थ एनिवर्सरी है, और कार्यक्रम के आगाज़ में एक बार फिर से हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। जब तक ये दुनिया रहेगी दोस्तों, आशा जी का नाम एक आफ्ताब की तरह, आसमान में चमकते सूरज की तरह हमेशा रहेगा। गीत संगीत के दीवानों के दिलों में उनका स्थान हमेशा रहेगा। उनका खिलखिलाता मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें हमेशा याद रहेगा। आशा जी, वी ऑल लव यू, और हम हमेशा आपको यूं ही प्यार करते रहेंगे, मोहब्बत करते रहेंगे। तो चलिए, एक बहुत ही युगल गीत रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ों में।

मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना, मुझसे क्या

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,

जी हाँ, मुंबई सिटी 10:20 हो चुके हैं और कार्यक्रम नमस्ते भारत। और अगर भारत की तरक्की की बात करें, यानी आज हमारा जो स्लॉट है उसका नाम है भारत हमको जान से प्यारा है। और बीइंग एन इंडियन और एक भारतवासी होने के नाते हम सभी अपने देश से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और हमेशा भारत की तरक्की के बारे में, खुशहाली के बारे में सोचते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे। लेकिन ऐसे में सबसे पहले एक बात आती है कि हमारे देश में जो देश की आधी आबादी है यानी महिलाएं, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। अगर हमारे देश की महिलाएं तरक्की करेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो हमारा देश हर हाल में आगे बढ़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि पिछले स्लॉट में हम बात कर रहे थे, आज वर्ल्ड लिटरेसी डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। 1947 में, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो महिलाओं की लिटरेसी रेट थी सिर्फ, आप सोचकर हैरान रह जाएंगे, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 8%। और आज है 75% के आसपास, यानी कहाँ 8% और कहाँ 75%, ये सरकारी आंकड़े।

व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे साथ जल्दी से जल्दी शेयर करें। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत, आशा जी की आवाज़, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि कोई दिल में आ चुका है।

जी हाँ, मुंबई सिटी 10:40 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम नमस्ते भारत, और बात कर रहे हैं आज जो हमारा टाइटल है, भारत हमको जान से प्यारा है, और बात कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए एजुकेशन यानी शिक्षा यानी विद्या कितनी ज़रूरी है। तो चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप ऐसी फिल्मों के नाम बताएं जिनमें एजुकेशन के बारे में बात की गई है। तो इस जो आपके नाम है वो मैं अगले स्लॉट में बताऊंगा। फिलहाल मैं नाम लेना चाहता हूं एक महान हस्ती का, सावित्री बाई फूले। दोस्तों, इनका नाम कौन नहीं जानता। इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को लेकर कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले खुद पढ़ने के लिए इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत फाइट करना पड़ा, और फिर खुद पढ़ने के बाद इन्होंने लड़कियों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। जी हाँ, इनके ज़िंदगी का एक ही मकसद बन गया था कि भारत में लड़कियों को शिक्षा दी जाए, उन्हें पढ़ाया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। और इसके लिए उन्होंने एक स्कूल खोला, और उस समय एक स्कूल खोलना जिसमें सिर्फ लड़कियाँ पढ़ेंगी, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन इन्होंने दोस्तों हार नहीं मानी। वो भारत की पहली महिला टीचर के तौर पर हमेशा याद की जाएंगी। लेकिन इस पूरे अभियान में एक पुरुष ने भी उनका पूरा पूरा साथ दिया था, और वो थे उनके पति ज्योतिराव फूले। आज हम इन दोनों को कोटि कोटि नमन करते हैं, सलाम करते हैं। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। गौर से सुनिएगा, मोहब्बत से सुनिएगा, महसूस कीजिएगा।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10% सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने शर्तें लागू
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिच योर लाइफ

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका दोस्त आरजे रविन आपसे विदा लेता हूँ। सुनते रहिए एफएम रेनबो, हैव ए नाइस डे। हमारी साथी आरजे सोनाली स्टूडियो में आ चुकी हैं आपको एंटरटेन करने के लिए।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 एफएम रेनबो। 11 बज रहे समय जानने के इस घंटे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिम में समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक चलेगा। आगे है, महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स राज्य की भर्ती परीक्षा प्रणाली का व्यापक अध्ययन कर आवश्यक सुधारों के सुझाव देगी। और अंत में, MHADA ने डिजिटल गणेशोत्सव 2026 प्रतियोगिता की घोषणा की है। प्रतिभागियों को DGMHADA ऐप पर पंजीकरण कर अपने बापा की तस्वीरों तथा वीडियो को अपलोड करना होगा। जिला स्तर पर होने वाले इस प्रतियोगिता में रचनात्मकता, सामाजिक सरोकार, पर्यावरण अनुकूलता, सजावट और अनूठी प्रस्तुति सहित विभिन्न मानदंडों पर प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसी के साथ समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आप सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो। अगला कार्यक्रम है ब्रेक फ्री। आकाशवाणी FM रेनबो। हाँ जी, बिल्कुल, म्यूजिकली योर्स। मंगलवार की सुबह हम और आप साथ साथ, तो भाई कहते हैं ना कि इस जो साथ का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको और भी ज़्यादा म्यूजिकल बनाने के लिए अब इस म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत करते हैं। पिछले ही आर में मैं सुन रही थी, बहुत ही ब्यूटीफुल मेलोडीज़ अपना ही रेडियो स्टेशन बजा रहा था। आप भी अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं 8657-66-1071 पर। और मेरा नाम सोनाली है, आपके साथ हूँ 2 बजे तक। और बातें तो खैर चलती ही रहेंगी, लेकिन कभी कभी होता है ना कि जब हम किसी की तरफ देखते भी हैं तो आँखों से कोई कुछ कह देता है और फिर बात हो जाती है कि आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। प्रोग्राम का आगाज कर रहे इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ में,

0: पसंद की कोई भी कार ले। कॉस्मोस कार लोन है ना?
1: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
0: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
1: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: बिल्कुल म्यूजिकली योर्स और मैं सोनाली आपके साथ हूँ। प्रोग्राम चल रहा है ब्रेक फ्री, नंबर है हमारा 8657661071। कहते हैं ले दे के एक नज़र ही तो होती है हमारे पास, किसी और की नज़र से दुनिया क्यों देखे। बात जब अपने नज़रिए और नज़र की होती है ना, तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर क्यों ज़रूरी है कि हम अपने सारे मुद्दों को अपने तरीके से समझने की कोशिश करें। अब जब बात

लगती है कि हर एक का अपना एक नज़रिया होती है। तो वैसे कहा जाता है ना कि एक कहानी के कई पहलू होते हैं, एक हमारा, एक आपका, और सच कहूँ तो जो रियल में हुआ है वो। तो जब भी कोई बात हम सुनने या समझने की कोशिश करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि उसके अलग अलग पहलुओं को टटोल कर देखा जाए। कुछ बातें होंगी इसी मुद्दे को लेके, लेकिन पहले अपनी इस म्यूज़िकल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो। गुड मॉर्निंग।

0: है विजेंद्र घटोल ने अकोला से मैसेज किया है, शुभ लक्ष्मी मस्तकार का मैसेज आया है। फिर सिगनपुरिया अशोक पाटिल का वर्ली से, राजेंद्र जुटानी शुभदा का मैसेज आया है, धनंजय का नवी मुंबई से मैसेज आया, बाबा का आया है दादर से, पंकज मोहड़ का मैसेज आया है, विठल जी का मैसेज आया है, महेश बोहरा जी का अजमेर राजस्थान से मैसेज आया है, प्रणव शिंदे का मैसेज आया है, राकेश माथुर जी का, अंजू का अंधेरी ईस्ट से मैसेज आया है। तो ये मैसेजेस के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आगे भी हमारी और आपकी बातें होती रहेंगी, लेकिन कहते हैं ना, जो आज हम बात कर रहे हैं पर्सपेक्टिव की, रादर, क्योंकि हर एक इंसान का अपनी बात को समझने का और देखने का तरीका होता है, और वो तरीका उस बात के ऊपर निर्भर करता है कि उस इंसान की ज़िंदगी में पहले क्या हो चुका है। मतलब अगर हम किसी इंसान को ऐसी सिचुएशन के बारे में समझाने या बताने की कोशिश करें जिसका उससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो उस बात के दर्द को, तकलीफ़ को या हैप्पीनेस को भी उस इंटेंसिटी के साथ समझ नहीं पाता। वो बात थोड़ी सी पर्सपेक्टिव बेस्ड हो जाती है। इसी बात को लेके है ना, कुछ फिल्में आई थी, तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। बस कुछ ही देर की बात है, लौट के आऊँगी इस कमर्शियल ब्रेक के बाद, रादर कमर्शियल ब्रेक के बाद कुछ गाने होंगे और उसके बाद लौट कर आएंगे और आपके साथ करेंगे ढेर सारी बातें। लेकिन अभी के लिए लेते कमर्शियल ब्रेक, सुनते रहेगा 107.1 FM रेनबो।
1: प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन
2: आपल्या प्रगतीसाठी मदतीला येते, आपलीच प्रॉपर्टी,
1: रेसिडेंशियल आणि कमर्शियल प्रॉपर्टी वर अर्थसहाय्य मिळवा, प्रोसेसिंग फी मध्ये सवलत,
2: व्याजदर फक्त 9.75%, रुपये 5 कोटींपर्यंत कर्ज उपलब्ध, अटी लागू।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव्ह बँक, जीवन करा समृद्ध।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन
2: आपल्या प्रगतीसाठी मदतीला येते, आपलीच प्रॉपर्टी,
1: रेसिडेन्शियल आणि कमर्शियल प्रॉपर्टी वर।
4: अंकोर वाट विष्णुधाम कंबोडिया हेरिटेज यात्रा, विश्वातील सर्वात मोठ्या मंदिराची एक अद्भुत अनुभूती।
5: 2 ते 10 डिसेंबर 2026, इतिहास, संस्कृती, वारसा, मंदिर स्थापत्य आणि परंपरा यांचा अनोखा संगम।
4: अंकोर थॉम, बयॉन, बांटी श्री सह 14 मंदिरे, नॅशनल म्युझियम, टोनले सॅप आणि विशेष आकर्षण अप्सरा नृत्य।
5: सोबत प्रख्यात लेखक व मंदिर स्थापत्य तज्ञ प्राध्यापक क्षितिज पाटुकले, शाकाहारी भोजन, 5-स्टार हॉटेल्स, आतापर्यंत 1200 अधिक जणांची कंबोडिया भेट,
4: विमान प्रवास, व्हिसा, सर्व खर्चासह 15 सप्टेंबर पर्यंत विशेष पॅकेज 1,40,000 रुपये फक्त।
5: ऑनलाइन बुकिंग साठी कंबोडिया अंकोर फाउंडेशन डोंबिवली, संपर्कासाठी फोन 98 21 40 38 38।
4: फोन पुन्हा एकदा 98 21 40 38 38।

वाकई कैसी पहेली है जिंदगानी, इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ मैं ये बता सकती हूँ कि मुझे किन किन लोगों के अभी हाल फिलहाल मैसेजेस आए हैं, जो जिन लोगों ने अपनी बात मुझ तक पहुँचाई।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: घर घेताना अनेक पर्याय उपलब्ध असतात, पण गृह कर्ज घेताना फक्त कॉस्मॉस होम लोन.
2: व्याजदर 7.80% पुढे, मुदत 20 वर्ष,
1: रुपये 3 कोटींपर्यंत कर्ज उपलब्ध, कमीत कमी प्रोसेसिंग फी.
2: ठरलं तर आता फक्त घ्यायचं कॉस्मॉस होम लोन.
1: आजच जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा.
2: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव्ह बँक, जीवन करा समृद्ध.
1: अटी लागू.
3: पौने 12 बजेंगे थोड़ी देर में, मतलब 11:40 हो चुके हैं और आप और मैं ब्रेक फ्री इस प्रोग्राम में हैं और हम कुछ नज़रिए को लेकर बात कर रहे थे. आप अपना नज़रिया मेरे साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि हर एक मुद्दे को देखने का अपना अपना तरीका होता है और हर एक इंसान उसी तरह से देखता है जैसा उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है. इसी बात को लेकर कुछ समय पहले मुझे एक मतलब ऐसे जब हम भी पढ़ते हैं या कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो एक जापनीज़ मूवी है रोशमन करके, अकिरो कुरोसावा की बहुत पुरानी ब्लैक एंड वाइट मूवी है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर पिक्चर है. उस मूवी में एक स्टोरी होती है और वो स्टोरी 3 अलग अलग लोग बताते हैं, ठीक है, मतलब लेकिन हर एक इंसान का अपना बताने का दृष्टिकोण इस तरह से होता है कि हमें लगता है कि हाँ यही सही है, लेकिन जो रियल आउटकम होता है वो पूरी तरह से अलग होता है. मतलब अगर मैंने जो मेरी नज़र से देखा वो मैं आपको बताऊंगी, कोई और आके आपको उसी सिचुएशन को नरेट करेगा, उनका नज़रिया कुछ और होगा, तो वो आउटकम जो रहता है वो बिल्कुल अलग होता है. इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उस इंसान के दृष्टिकोण से बात को समझने की कोशिश करें जो हम तक अपनी बात पहुंचा रहा है. हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हर एक इंसान अपने अपने हिसाब से ही चीज़ों को देखता है, लेकिन कोशिश तो की ही जा सकती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला गाना आपके लिए प्ले करती हूँ. थोड़े से पुराने गाने और नए गाने का जो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अपना जो चैनल है वो खास और अच्छा बना रहे. तो इस बात के चलते अगला गाना प्ले कर रही हूँ और गानों से तो नज़र हटे ना हटे, चेहरे से किसी की नज़र हटती ही नहीं है.

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 एफएम रेनबो। 12:20 हुए, समय जानने के इस घंटे के समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से शुरू होने वाली 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालीन साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक और दशकों से चले आ रहे संबंधों के साथ साथ श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले और महासागर पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। जाने माने संगीतकार भूपेंद्र हजारिका की शताब्दी जयंती के उपलक्ष्य में आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर हजारिका ने पूर्वोत्तर भारत के संगीत को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। FIH महिला हॉकी विश्व कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स 2026 में ऐतिहासिक 5वां स्थान हासिल करने के बाद भारतीय महिला टीम आज जापान के लिए रवाना हो गई। टीम का लक्ष्य एशियाई खेल आईची नागोया 2026 में स्वर्ण पदक जीतने के साथ लॉस एंजल्स में 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करना है। और अंत में, ठाणे जिले में एक निजी निवेश कंपनी ने 6 निवेशकों के खिलाफ अधिक मुनाफे का वादा कर 68 करोड़ से 7 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी, माफ कीजिएगा, इसे फिर से सुन लीजिए। ठाणे जिले में एक निजी निवेश कंपनी के 6 निदेशकों के खिलाफ अधिक मुनाफे का वादा कर 68 निवेशकों से 7 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी करने का आरोप का मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने आज बताया, ये धोखाधड़ी कई वर्षों तक कई मुखौटा कंपनियों के जरिए की गई। इसी के साथ समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आप सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो। बारह बजकर 2 मिनट हो चुके हैं, प्रोग्राम म्यूजिक कैफे, और चलिए इस कैफे को और भी ज्यादा म्यूजिकल बना देते हैं। इस गाने के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। कुछ गाने हैं ना, हमेशा यादों में ताज़ा तो रहते हैं, लेकिन है ना, कई बार वो गाने, मतलब एक बार वो गाना बन जाने के बाद कई बार सोशल मीडिया के रील्स के थ्रू, किन्हीं किन्हीं माध्यमों के थ्रू वो गाना आप तक बार बार टकराता है, और फिर लगता है कि यार उस ज़माने में तो ये गाना हमने सुना था, आज फिर ये गाना लौट कर आ गया है और अब अलग अंदाज में लोग सुन रहे हैं। तो चलिए हम भी उस गाने को फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। सुनिए, बने रहिए हमारे साथ। गुड आफ्टरनून।

0: 12:13 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक कैफे और आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। विजेंद्र घटोल जी का कोला से, ओ माय गॉड, काफ़ी सारे मैसेज आ गए हैं। देन संजय दर्शन जी का मैसेज आया है, पंकज मोहोड, प्रमोद चिंचालकर, प्रमोद कारखानी जी का पूना से मैसेज आया है, फिरोज सिंह पुरिया, और हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये मैसेजेस है। और जो लोग रेगुलर मैसेज करते हैं ना, उन सबके नाम देख के आमतौर पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई नया मैसेज, मतलब कहते हैं ना, हमारा परिवार बड़ा होता जाता है जब किसी ऐसे इंसान का मैसेज हम तक पहुंचता है जिनका मैसेज आमतौर पर नहीं आता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनते तो हैं लेकिन मैसेज करना इतना पसंद नहीं करते या फ़ोन करना इतना पसंद नहीं करते। तो जब ऐसे लोगों की कहते ना कि बात हम तक पहुंचती है, तो ऐसा लगता है कि कोई इंसान एक अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले रहा है हम तक अपनी बात पहुँचाने की, जो अपने आप में बहुत सेटिस्फैक्ट्री होता है, क्योंकि हम और आप कई सालों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ लोग, कुछ चेहरे, कुछ मैसेजेस तो बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि अरे हाँ, ये तो रोज़ के ही अपने जैसे फैमिली जैसा ही हो जाता है, रिश्तेदार जैसे फील आने लग जाता है। अगर हम आते हैं और कुछ मैसेजेस नहीं आए, कुछ लोगों के मैसेजेस, तो लगता है अरे सब ठीक तो होगा, आज मैसेज क्यों नहीं है आया। सो इन बातों के चलते अपना जो कुछ नए जब मैसेज आते हैं, तो ऐसा लगता है अपना परिवार ही बड़ा हो रहा है। और परिवार से एक और बात याद आती है कि हम परिवार उन लोगों के साथ जब बनता है और जुड़ता है जब हम अपने दिल की बात उन तक पहुंचाते हैं या उनकी बात हम सुनते हैं, दिल खोल कर सुनते हैं। और आमतौर पे मैंने देखा है कि अभी हाल फिलहाल ही कुछ यंग जनरेशन के बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन करने का मौका मिला, तो ध्यान आया कि जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो बहुत ईजीली एक बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनको अगर कोई दिक्कत आती है तो वो कहते हैं हाँ, मैं थेरेपी ले रही हूँ या मैं थेरेपी ले रहा हूँ। थेरेपी मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड साइकोथेरेपी लेने की बात आती है, क्योंकि वो कहते हैं कि हालांकि परिवार तो है ही, लेकिन ऐसा कोई इंसान जो विदाउट जजमेंट आपकी बात सुन सके। सो एक ये नई जनरेशन के लोगों के साथ ये बहुत ही, सच कहूँ तो बहुत अच्छी बात भी है, और एक कि अपने दिल खोल के अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, ये सच कहूँ तो एक अपने आप में एक नया आयाम है, एक नया दृष्टिकोण है चीज़ों को देखने का, परखने का। चलिए लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, आगे बढ़ेंगे बातों के साथ, गानों के साथ में। और जैसे कि आपको बताया कि 12:30 होगा प्रोग्राम उमंग, लेकिन अभी के लिए एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है।
3: इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुटे पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है।
4: आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें।
5: आवेदन 30 सितंबर 2024 तक।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

हाँ जी, हो सकता है आशा जी का ही फोन हो, सुनिए और बने रहिएगा हमारे साथ।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जीवन में सुख कितना मिला ये मत गिनिए, बल्कि ये देखिए कि आपके कारण कितने दिलों में मुस्कान आई, यही सच्ची कमाई है। श्रोताओं, ये सुविचार भेजा था आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। मोताला महाराष्ट्र से रतनमाला सुरलकर, विजय सुरलकर जी लिखते हैं, ज्ञान शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर उमंग कार्यक्रम सुनना अब हमारी आदत बन चुका है। प्रत्येक प्रस्तुति कुछ नया सीखने का अवसर देती है और सामान्य ज्ञान में निरंतर वृद्धि करती है। उपयोगी जानकारी, रोचक विषयों और उत्कृष्ट प्रस्तुति के कारण ये कार्यक्रम श्रोताओं के लिए सचमुच प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। विमलेश जी, अजीत जी और उमंग की पूरी टीम को इस सराहनीय प्रयास के लिए हार्दिक बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और वारिस अली खान, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, तहसील ठियोग जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी, आप सबके सुंदर संदेशों के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं ये भी जानिए श्रृंखला में हर दम हम आपके लिए लेकर आते हैं रोचक जानकारियां, विचार विमर्श और प्रेरक प्रसंग। इस सप्ताह हम फिर से आपके लिए लेकर आ रहे हैं कई प्रेरक प्रसंग। आज हम अपने उमंग कार्यक्रम के प्रिय श्रोताओं के लिए एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल दिया। इस कहानी का संदर्भ NCERT की कक्षा 6 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 में संदर्भित है। जरा अंदाजा लगाइए श्रोताओं, मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अरुणिमा सिन्हा की, भारत की उस साहसी महिला की जिसने अपना एक पैर खोने के बाद भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। आइए जानते हैं कौन है अरुणिमा सिन्हा, आखिर उनके साथ हुआ क्या था। अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल की खिलाड़ी थीं। उनका जीवन खेल, सपनों और आगे बढ़ने की उम्मीदों से भरा था, लेकिन वर्ष 2011 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 11 अप्रैल 2011 की बात है, वो CISF की परीक्षा देने के लिए ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थीं। कुछ बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट करने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें इसी दौरान चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वे रेलवे ट्रैक पर गिर गईं और दुर्भाग्य से दूसरी पटरी पर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गईं। उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनका एक पैर काटना पड़ा। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल में पड़े पड़े उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को यूं ही समाप्त नहीं होने देंगी। अरुणिमा के सामने कठिनाइयां

0: कम नहीं थीं। उन्हें कृत्रिम पैर लगाना था, उन्हें फिर से चलने का अभ्यास करना था। धीरे धीरे वे चलना सीख गईं और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। शरीर में दर्द था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो ऐसी परिस्थिति में एक आम इंसान नहीं ले सकता। उन्होंने पर्वतारोहण सीखने का निर्णय लिया। शायद वे दुनिया के सामने ये साबित करना चाहती थीं कि दुर्घटना ने उनका शरीर बदला है, लेकिन उनके मनोबल को नहीं। फिर क्या था श्रोताओं, उन्होंने प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल से संपर्क किया और प्रशिक्षण शुरू किया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी फिर से चलना सीख रहा था, वो पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है। प्रशिक्षण आसान नहीं था। कृत्रिम पैर के साथ चलना, चढ़ना, गिरना और फिर उठना, हर कदम एक चुनौती था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार आ ही गया वो दिन। उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया, और वो भी एक पैर खोने के मात्र 2 साल बाद। श्रोताओं, हम तो कहना चाहेंगे कि वहां पहुंचकर उन्होंने केवल एवरेस्ट पर विजय नहीं पाई थी, उन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया था, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके शरीर से बढ़कर उसके संकल्प में होती है। विद्यार्थी मित्रों से कहना चाहूंगी, बहुत कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन एक बार संकल्प करके तो देखिए। इसलिए तो कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। श्रोता मित्रों, अरुणिमा सिन्हा की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाई आने के बाद भी जीवन आगे बढ़ सकता है। श्रोताओं, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी, आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। आप हमारी ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। ताजी जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को लगातार फॉलो करें। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ, और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है छुपन छुपाई। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम मनोरंजक ढंग से इस पारंपरिक खेल के बारे में बताता है।
1: चलो चलो चलो चलो छुपन छुपाई खेलते हैं।
2: छुपन छुपाई, छुपन छुपाई, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
3: एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे।
4: जीत, हर बार मैं ही डाइन देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ।
5: बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
3: उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला।
4: 1, 2, 3 सब छुप गए ना। 98, 99, 100 लगता है सब छुप गए। चलो अब मैं ढूंढता हूँ सबको। अरे इधर तो कोई भी नहीं है। दरवाजे के पीछे देखता हूँ, यहाँ पक्का कोई ना कोई छुपा होगा।
3: मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया।
6: मोहित पापा! अरे नहीं, हर बार मैं ही सबसे पहले पकड़ा जाता हूँ।
3: जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा।
4: अब मैं कमरे में देखता हूँ, लगता है अलमारी के पीछे कोई छुपा है।
3: बबली अलमारी के पीछे मिल गई।

0: अलमारी के पीछे हो?
1: धप्पा!
0: मोहित और बबली दोनों आउट हो गए।
2: मारिया पलंग के नीचे मिल गई।
0: मारिया तुम पलंग के नीचे हो?
3: नहीं, मैं पलंग के नीचे नहीं हूँ।
1: अंदर छुपा।
0: मारिया
1: धप्पा!
3: अरे नहीं।
2: उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। सिमरन दादी के पीछे मिल गई।
4: दादी दादी दादी, हिलना मत, जीत आया है, वो मुझे धप्पा बोल देगा।
0: लगता है सिमरन दादी के पीछे छुपी हुई है, अभी जाके देखता हूँ। और ये गया ये।
1: जोर जोर से सिमरन धप्पा।
3: एक मिनट, फिर पकड़ लिया।
0: अब बची है नाजिया, कहाँ हो सकती है?
2: जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा।

0: यहाँ तो नहीं है, पेड़ के पीछे देखता हूँ, इधर भी नहीं है। अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
1: जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वो पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा।
0: अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
1: नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया।
0: जी धप्पा! ओहो, अरे नहीं, मेरी फिर से बारी आ गई।
1: जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया।
0: एक दो तीन।
2: छुपन छुपाई है ना मजेदार खेल? तो बच्चों अब सोचो और जरा बताओ कि छुपन छुपाई खेलते समय तुम अपने घर में कहां कहां छिप सकते हो, और यदि खेलते खेलते चोट लग जाए तो तुम क्या करोगे। और हाँ, ये भी मालूम करो कि कौन कौन से खेल हैं जो घरों में खेले जाते हैं और कौन कौन से खेल हैं जो बाहर खेले जाते हैं।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छुपन छुपाई। छुपन छुपाई के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम छुपी प्रतिभा। इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि हर बच्चा अनोखा है और उसमें बहुत सी प्रतिभाएं छुपी होती हैं। जरूरत है उन प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने की।
4: साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी दी थी जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। हमने खासकर उन बच्चों के विषय में चर्चा की थी जिनकी भिन्नता छोटी उम्र में ही नजर आ जाती है, पर उनमें से अधिकांश देखने में और बच्चों के समान ही लगते हैं और उनकी पहचान करने में कठिनाई होती है। आज हम चर्चा करेंगे कि इन बच्चों को पढ़ाई, सामाजिक एवं शारीरिक गतिविधियों में किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और अध्यापक गण उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं जिससे कि ऐसे बच्चों का जीवन बेहतर और सार्थक हो सके। तो आइए आज चलते हैं एक स्कूल में। इस स्कूल के शिक्षक बच्चों के विकास में गहरी रुचि रखते हैं। उन्हें चिंता रहती है कि अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो आखिर क्यों, उसकी क्या समस्या है और कैसे उस बच्चे की मदद की जा सकती है। साथियों, इस स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक विकलांगता के शिकार हैं, तो शिक्षकों ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों की समस्याओं के विषय में किसी डॉक्टर की राय ली जाए, और इस अवसर पर इन बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाए ताकि इन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाए और यथासंभव उनका समाधान भी खोजा जाए। और एक दिन
5: साथियों, आज मैं पूरे स्कूल की ओर से डॉक्टर पुष्पा का स्वागत करता हूं।
6: आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद।
7: नमस्कार,
6: नमस्कार, नमस्कार,
5: नमस्कार। आपका धन्यवाद डॉक्टर पुष्पा कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, और हम आशा करते हैं कि आपके परामर्श और विस्तृत अनुभव का हम सबको अवश्य लाभ मिलेगा कि हम अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं। और साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं अपने विद्यालय के सभी उन अध्यापकों का जिनकी रुचि और प्रयास के कारण यह संभव हो पाया। आज हमारे बीच में ऐसे विशेष बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। और हां, सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे। इन्हें कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन ये कई बातों में दूसरे बच्चों से बहुत आगे हैं। तो चलिए आज की इस विशेष बैठक को शुरू करते हैं। रेनू जी, आप
7: जी जी
5: आप कह रही थी कि आपकी कक्षा में एक बच्ची है मीना, आप मीना के बारे में हमें कुछ बताइए।
7: जी, मैं आपको इस बच्ची मीना से मिलवाती हूँ। देखिए, मेरी मीना पढ़ाई में बहुत तेज है, इसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं और ये इस बार भी चौथी कक्षा में प्रथम आई है। और हाँ, इसकी लिखाई भी बहुत सुंदर है।
8: बहुत अच्छे।
7: मीना
9: जी,
7: तुम्हें पढ़ाई कैसी लगती है?
9: दीदी, मुझे तो पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी लगती है। मुझे स्कूल आना और पढ़ना बहुत पसंद है।
7: और तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है?
9: जी, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं और बच्चों की तरह तेज नहीं दौड़ पाती, मेरे एक पैर में तकलीफ है।
6: अच्छा, ये बताइए, ऐसा मीना के साथ कब से है? क्या इसे बचपन से ही ये तकलीफ है?
7: डॉक्टर पुष्पा, इसकी माँ ने मुझे बताया था कि जब ये पैदा हुई थी तो बिल्कुल ठीक थी, फिर 2 साल की उम्र में बहुत बीमार हो गई। इसको तेज बुखार हो गया और इसके इलाज में देर हो गई। उसके बाद इसके बाएं पैर की ताकत जाती रही।
6: अच्छा।
7: जिससे ये स्वाभाविक रूप से चलने फिरने से असमर्थ हो गई। डॉक्टर ने बाद में बताया कि मीना को पोलियो हो गया है।
5: डॉक्टर पुष्पा, पोलियो के विषय में हमें जरा विस्तार से बताएंगे।
6: देखिए, पोलियो एक ऐसा रोग है जो केवल हाथों या पैरों पर असर करता है।
5: अच्छा।
6: इसका असर जिस हाथ या पैर पर होता है उसका विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता। पोलियो से प्रभावित हाथ पैर पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें शक्ति कम हो जाती है।
5: जी।
7: डॉक्टर पुष्पा, क्या पोलियो का असर देखने सुनने या बोलने पर भी होता है?
6: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें देखने, बोलने, सुनने और समझने में कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, एक बात बताइए।
7: जी।
6: क्या मीना के माँ बाप मीना को बाद में भी डॉक्टर के पास ले जाते थे?
7: जी हाँ, उसकी माँ ने मुझे बताया था कि वे लोग उसे ले तो जाते थे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, पर इसके पहले ही उसके बाएं पैर की हड्डियाँ बिल्कुल पतली हो गई थी। उसमें खड़े होने की ताकत नहीं रही और इसका बायां पैर इसके दाएं पैर से छोटा हो गया।
6: देखिए, समय से दवाई न लेने से या समय पर इलाज न कराने से ये समस्या आ सकती है।
5: जी।
6: अब इसीलिए हमारी सरकार ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए जगह जगह पोस्टर, इश्तिहार लगवाए हैं। आपने रेडियो टीवी पर सुना होगा कि आजकल तो सरकार ने पोलियो हटाओ अभियान चलाया है।
7: जी, जी।
6: जिसमें

0: में 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है।
1: जी हाँ, पर डॉक्टर पुष्पा, अब हम मीना की मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
2: जी,
0: जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, वो कक्षा में और बच्चों की तरह पढ़ सकती है। हाँ, शारीरिक क्रियाओं में या को करिकुलर एक्टिविटीज में उसको इस प्रकार शामिल कीजिए कि वो कार्य उसकी क्षमता के अनुसार हो।
2: जी। नीलम, तुमने कहा था कि तुम्हारी क्लास में सरिता है जिसके बारे में तुम चर्चा करना चाहती हो।
3: जी डॉक्टर पुष्पा, मेरी कक्षा में इस सरिता ने अभी दाखिला लिया है। ये व्हील चेयर में आती है, ये 6ठी कक्षा में पढ़ती है और ये भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है।
0: अच्छा, एक बात बताओ।
3: जी।
0: सरिता व्हील चेयर का प्रयोग कब से करती है?
3: इसकी माँ ने बताया था कि व्हील चेयर का प्रयोग इसने इसी साल से शुरू किया है। 4 साल की उम्र तक तो सरिता और बच्चों की तरह खेल कूद में बहुत अच्छी थी, परंतु धीरे धीरे इसके पैरों में कमजोरी आती गई और फिर इसे इस कुर्सी का सहारा लेना पड़ा।
0: सरिता, तुम्हें और भी कोई परेशानी है?
4: हाँ मैडम जी। मुझे हाथ में कमजोरी लगती है और गर्दन घुमाने में कठिनाई होती है।
3: डॉक्टर पुष्पा, कहीं ये समस्या बढ़ तो नहीं रही है? क्या इससे इसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा?
0: हाँ, ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी अवस्था का शिकार है जिसमें मस्कुलर डिसफंक्शन यानी गत्यात्मक विकार होता है और जो हर बच्चे में अलग अलग दिखाई देता है।
3: जी।
0: ऐसे बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। इस अवस्था में धीरे धीरे सारे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं। पर इसका समझने की योग्यता और पढ़ाई लिखाई पर असर नहीं पड़ता।
3: अच्छा।
0: ऐसे बच्चे 12वीं तक और उसके आगे भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं।
3: ऐसा विकार होता क्यों है?
0: ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चों के खून में कुछ रसायन जिसको CPK कहते हैं, उसकी मात्रा ज्यादा होती है।
3: हम इसमें बच्चों की क्या मदद कर सकते हैं डॉक्टर पुष्पा?
0: सरिता, अब तुम अपनी कक्षा में जा सकती हो। हाँ
4: जी मैडम।
0: हाँ, तो इनकी मदद करने के लिए आप इन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको जितना प्यार दे सकते हैं उतना दे।
2: जी।
0: इन बच्चों की आयु सीमित होती है, इसलिए उनसे उच्च पढ़ाई और नौकरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
3: जी।
0: केवल बच्चों को और उनके माता पिता को प्रोत्साहन देकर उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और बच्चों की तरह इनको काम देते रहें।
3: जी ठीक है।
2: हाँ दीपिका जी, आप भी कुछ किसी बच्चे के बारे में बात करना चाहती थी?
3: जी डॉक्टर पुष्पा, ये सीमा है, ये भी सरिता की तरह पहिए वाली कुर्सी पर है। सीमा, ये डॉक्टर पुष्पा हैं।
5: नमस्ते।
2: डॉक्टर पुष्पा, ये हमारे स्कूल की अध्यापिका रेनू जी है ना, उनकी बहन की बेटी है।
0: अच्छा अच्छा। सीमा, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो तुम?
5: मैं 7वीं में पढ़ती हूँ।
0: रेनू जी, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए।
1: डॉक्टर पुष्पा, मैंने और नीलम जी ने इसकी माँ से विस्तार में बातचीत की है।
0: अच्छा।
1: ये जब खड़ी होने की कोशिश करती है तो गिर जाती है। बचपन से ही हर काम को सीखने में पीछे रह जाती है। जब ये 10 महीने की थी तब भी अपनी गर्दन अन्य बच्चों की तरह ठीक से संभाल नहीं पाती थी और अब भी ये ठीक से चल नहीं सकती। हर समय इसको इस पहिए वाली कुर्सी पर ही बैठना पड़ता है।
3: डॉक्टर पुष्पा, सीमा बहुत होनहार है, ये बहुत कोशिश करती है कि और बच्चों के साथ गेंद से खेले, लेकिन ये गेंद पकड़ ही नहीं पाती है, गेंद इसके हाथ से गिर जाती है।
1: जिस तरह से और बच्चे अपने हाथ से खाना खाते हैं उस तरह ये खा नहीं सकती, इसको खाने में समय लगता है। कभी कभी तो इसके हाथ बिल्कुल अकड़ जाते हैं।
0: अच्छा।
1: जब हाथ में अकड़न ज्यादा हो जाती है तो इसके हाथ से खाना गिर जाता है।
3: डॉक्टर पुष्पा, कभी कभी सीमा के मुंह से लार भी टपकती है और चेहरे की मांसपेशियां भी अकड़ सी जाती हैं।
1: शायद इसलिए ही दूसरे बच्चे इसको कुछ

0: अलग तरह से देखते हैं।
1: जी,
0: कुछ लोगों का शायद ये मानना है कि ये कोई छूत की बीमारी ना हो,
2: पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है।
1: सीमा, तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो। तुम्हें क्लास में जो काम करने के लिए कहा जाता है वो सब समझ में आता है क्या? ये सब डॉक्टर पुष्पा को बताओ।
3: हाँ, संभव तो आता है पर लिख नहीं सकती।
0: इसे देखने और बोलने में कुछ परेशानी होती है। सवाल तो कर लेती है पर उत्तर देने में कठिनाई होती है।
2: अच्छा।
0: और ये साफ साफ बोल नहीं पाती, इसे लोग इसकी बात ठीक ठीक समझ नहीं पाते।
1: रेनू जी, इसको ये समस्या कब से है?
0: ये बहुत ही छोटी थी, करीब 4 महीने की रही होगी। तब ये पालने से गिर पड़ी थी।
2: अच्छा।
0: इसके सर पर बहुत गहरी चोट लग गई थी। शायद हो सकता है ये चोट का प्रभाव हो।
1: डॉक्टर पुष्पा, इसको समस्या क्या है?
2: ऐसा लगता है कि ये दिमागी पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। इसको केवल शारीरिक विकलांगता ही है। क्योंकि ये 7वीं कक्षा में पढ़ती है तो इसके दिमाग पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
1: डॉक्टर पुष्पा, हम इसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
2: देखिए, इसको हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराइए।
4: जी। आज हमने 3 प्रकार की गत्यात्मक विकलांगताओं के बारे में जानकारी हासिल की।
1: जी।
4: पहली पोलियो, दूसरी मांसपेशी विकृति और तीसरी मानसिक पक्षाघात।
1: डॉक्टर पुष्पा, आप इसके बारे में कोई उपाय बताएंगे?
2: इन बच्चों के लिए कुछ अन्य मदद की जरूरत भी पड़ती है, जैसे कि संसाधन यंत्र आदि, अच्छा आहार और धीमी गति से पढ़ाना।
4: डॉक्टर पुष्पा, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं।
2: अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
4: नमस्कार।
5: तो साथियों, डॉक्टर पुष्पा ने आज के वार्तालाप में हमें बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम इनकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराना। इसके अलावा ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि गत्यात्मक विकलांगता अन्य प्रकार की भी हो सकती है, जैसे रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कठिनाई होने से, जोड़ों के दर्द, विटामिन डी की कमी, जन्म के साथ बच्चों में सख्त जोड़ों का होना, शरीर के किसी अंग का गलत जगह होना, देरी से पैदा होना, किसी दुर्घटना में अंग का कट जाना, कोई अंग न होना इत्यादि। साथियों, याद रखिए, इन बच्चों को हमेशा आपका प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए।
6: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
7: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
6: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
8: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
9: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: एक बजने को है, एक बजे आप सुनेंगे समाचार और समाचारों के उस पार होगा प्रोग्राम हिट एंड हॉट। हिट एंड हॉट में मैसेज भेजने और अपनी रिक्वेस्ट भेजने के लिए जो नंबर है वो है 8657661071। सो अपनी प्लेलिस्ट के साथ रेडी रहिएगा ताकि आपकी रिक्वेस्ट हम तक समय रहते पहुंच जाए और आपकी रिक्वेस्ट को हम हमारे कार्यक्रम में शामिल कर सके। ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है तो इस बात के चलते आप अपनी रिक्वेस्ट हम तक जितनी जल्दी हो सके पहुँचाइए। सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्राच्या दुपारच्या बातमीपत्रात मी शुभांगी बिंदू आपलं स्वागत करते। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज गुजरात आणि महाराष्ट्र दौऱ्यावर असून मुंबईत ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 उद्घाटन त्यांच्या हस्ते होणार आहे। 7वा ग्लोबल फिनटेक महोत्सव आजपासून 11 सप्टेंबरपर्यंत होणार आहे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हा जगातल्या सर्वात मोठ्या वार्षिक फिनटेक परिषदांपैकी एक आहे। धोरणकर्ते, नियामक, मध्यवर्ती बँका, वित्तीय संस्था, फिनटेक तंत्रज्ञान कंपन्या, गुंतवणूकदार तसंच शिक्षण क्षेत्रातल्या संबंधितांना एकत्र आणणारा मंच म्हणून 2000

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 1:05 प्रोग्राम हिट एंड हॉट और अब जबकि आपकी रिक्वेस्ट का आर शुरू हो गया है सो आप ही के रिक्वेस्ट पे सबसे पहला गाना प्ले करती हूँ. आज भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भूपेन हजारिका की शताब्दी जयंती है. सभी लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उन्होंने जिस तरह का म्यूज़िक बनाया और नॉर्थ ईस्ट के म्यूज़िक को दुनिया भर में पहुँचाया सो उनकी मेमोरी के साथ में आज हम अपने इस हिट एंड हॉट का आगाज़ कर रहे हैं और आगे आगे आप ही की रिक्वेस्ट पे गाने आते रहेंगे. ये गाना भी राधा आप ही की रिक्वेस्ट पे है, मैं नाम तो बताऊंगी ही. 8657661071 पे आप अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचा सकते हैं. ज़्यादा ना बोलते हुए ये गाना आप सबके लिए.

द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ये गाना, और मैं तुमको क्या कहूँ, किशोर दाने और आशा जी ने ये गाना इतना, मतलब सभी गाने बहुत खूबसूरत गाए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब ये दो अलग अलग आवाज़ें हैं, रादर मतलब ऐसा लग रहा है कि हीरो और हीरोइन की ही आवाज़ है, इतना ड्रामे के साथ उन्होंने पूरा गाना गाया हुआ है। 1:15 आप लोगों की रिक्वेस्ट के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं, और यस, जब आशा जी का जिक्र आता है तो इस गाने का रिक्वेस्ट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो सुनिए इस गाने को, नाम मैं बताऊंगी कुछ ही देर के बाद, आप ही की रिक्वेस्ट है सारी, बहुत सारे नाम हैं, सुनिए, ब्यूटीफुल सा ट्रैक है, खो जाइए इन गानों में।

0: 1:26 हो रहे हैं और आप ही की रिक्वेस्ट पे इतना म्यूजिकल शो हो रहा है ना. आप लोगों की भी जो पसंद है, सच कहूँ तो बड़ी ही खास और स्पेशल है, क्योंकि कुछ कुछ गाने जो आप लोग मुझे आशा जी के, तो मतलब सच कहूँ तो आज हम अगर पूरे दिन भी आशा जी की प्लेलिस्ट चलाए तो भी शायद हमारे पास समय कम पड़ जाए. इतने गाने और इतने ब्यूटीफुल गाने उन्होंने गाए हैं, इतने मेलोडियस गाने उन्होंने गाए हैं. लेकिन कुछ और भी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है, तो चलिए उस बात के चलते अब हम आगे बढ़ते हैं और आप ही की रिक्वेस्ट पर अगला गाना प्ले कर रही हूँ. और साथ साथ में हालांकि हम सभी आशा जी को, भूपेन जी को बहुत प्यार करते हैं, उनके गाने को बहुत बहुत बहुत प्रेज करते हैं, लेकिन साथ ही कुछ लोगों ने अलग अलग रिक्वेस्ट भी भेजी है, तो उनको भी शामिल करने की कोशिश कर रही हूँ. और ये उसी कोशिश में अगला गाना.
1: एक दीवानी भी.

1:45 हो रहे हैं, समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो मैं सबसे पहले तो गाने की तरफ आगे बढ़े, उसके पहले मैं उन सभी लोगों के नाम बताना चाहती हूँ जिनके रिक्वेस्ट आई थी। विजेंद्र घटोल का अकोला से

मैसेज आया था, अभिजीत गवानकर का मैसेज आया है, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, पूरे परिवार के साथ है ये। सरिता सिद्धांत, एकांश और टुक टुक गवानकर, राकेश कुमार माथुर जी का मैसेज आया है, संजय दर्शन जी का मैसेज आया है, सुरेश काशीनाथ पाटिल, अविनाश दामोदर कड़ू का वाडवन टिगरेपाड़ा से मैसेज आया है, साथ ही साथ में फिरोज सिंह पुरिया जी का, मुकेश कश्यप जी का पूरे परिवार के साथ ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मैसेज आया है, मुकेश, शीतल, सोनू, राजपाल का, जल, मानव, लक्ष्य, मोहित, ऋतिक, यस यस यस। देन हीरामणि वर्मा जी का मैसेज आया है, पूरा परिवार है ये भी, पारसमणि, पुष्पेंद्र, नोखेलाल और ये भाटापारा छत्तीसगढ़ दत्त त्रेगी से मैसेज है इन्होंने, पंकज मोहड़ का मैसेज आया है, गुरमीत सिंह मीता का साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से मैसेज आया है और खुशनुमा गीतों की महफिल ये उन्होंने कहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र परमार जी का मैसेज आया है, चेतन कुमार का गया बिहार से, शुभलक्ष्मी मस्तकार, प्रणव शिंदे, मिंटू थॉमस पंजाब से, वड़िंग खेड़ा पंजाब से मैसेज आया है, पिंकी लवली, आरती और डिकेस्ट्रो जॉन का मैसेज आया है, पर्ल विलिस डिकेस्ट्रो का जनकपुरी सहारनपुर से, साथ ही साथ मेहर अरोरा श्री गंगानगर राजस्थान से, हरजिंदर छिंदा जसवीर का मैसेज आया है, हाँ जी, और ये हाँ गांव नथाना पंजाब से मैसेज आया है, देन सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से मैसेज आया है, साहिल बजाज और शुभचंद्र बजाज का दिग्दर्शन और कविता, महेश बोथरा, संदीप कुमार का मैसेज आया है, ये मैसेज आया संदीप मक्कड़ जी का, संदीप जी और ज्योति जी का मैसेज आया है, साथ ही हितेंद्र दास जी का मैसेज आया है असम से, प्रमोद चिंचोलकर जी का मैसेज आया है, एक सिर्फ नंबर आया है, अजय साखरे जी, शुभदा, अमित भगत, प्रमोद कारखाने, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये कुछ मैं पहले ही नाम पढ़ चुकी हूँ। सो बहुत बहुत शुक्रिया मैसेजेस का, और क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा समय तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट मैं प्ले कर सकूँ। और अगला गाना जो मैं प्ले करने वाली हूँ वो है बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना है, ये गाना सुनिए, एंजॉय करिए, बने रहिएगा हमारे साथ, ये एक मतलब

1:51 हो रहे हैं, मुझे अब दीजिएगा इजाज़त। महाराष्ट्र के श्रोताओं का एड्रेस के साथ नाम नहीं लिया तो ऐसी बात नहीं है, कई बार वो आप लोगों के नाम रिपीट होते रहते हैं, जैसे जो पंकज मोहड़ है ये आप जो है पूरा ऑलमोस्ट रिपीटेटिवली मैसेज आते हैं। सो अमरावती से बता देती हूँ कि ये मैसेज कर रहे हैं, और साथ ही साथ में प्रमोद चिंचोलकर बहुत सारे मैसेजेस थे। 1:52 मुझे दीजिएगा इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात। और आने वाले फेस्टिवल गणेश चतुर्थी और सारा कहते हैं ना कि सारे फेस्टिवल के आप मज़ा लीजिएगा, मोदक खाइएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और अपने आसपास स्वच्छता बना के रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो बुद्धि के भगवान हमारे घर पर आएंगे सो वो साफ़ सफाई पसंद वातावरण में रहे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का भी ध्यान रखिएगा। और जाते जाते आपके लिए गाने छोड़ के जा रही हूँ, 2 बजे के बाद मराठी प्रोग्राम होगा और इन्हीं बातों के साथ गानों के साथ दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।

0: शाह मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WFDC के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
1: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्त धारा का आह्वान किया है। इस सप्त धारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी, लेकिन इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस पर तेजी से हुए काम ने देश के लॉजिस्टिक तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है, जो तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपने उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
1: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी सेवाओं को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने टांडा रोड और वडोदरा के बीच नई यात्री रेल सेवा को भी झंडी दिखाई। ये सेवा अलीराजपुर के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेल विस्तार परियोजनाओं और लगभग 1,780 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसका उद्देश्य गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्होंने गुजरात सरकार की 2,600 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नवसारी भी जाएंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नए AI सक्षम और अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
2: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण आज से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। GFF वर्ष 2020 से ही नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। GFF 2026 का विषय है प्रभाव डालने की क्षमता, एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियां। GFF में इस वर्ष एजेंटिक AI, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को आज साझा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट

0: में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित ये लेख आंगनवाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनवाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति NR बोरकर की एकलपीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज किया। याचिका में उन्होंने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में PG इमारत ढहने के बाद ये याचिका दायर की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
2: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
3: श्री विक्रम सिंह जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहासुनी हुई शोर शराबे के ऊपर। उसके बाद वो कहासुनी के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई, जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल

0: यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
2: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 386।

सरकशी त गेला ससा कोणास ठाऊक कसा पण सरकशी त गेला ससा।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो और मैं हूं उर्वशी आपके साथ। वक्त हो चला है लव यू जिंदगी का और मैं आ गई हूं आपके साथ। हम मिलेंगे 3 घंटे के लिए। सबसे पहले लव यू जिंदगी में मैं आपके साथ बातें करूंगी, उसके बाद हम अंदाज़े बयां में बहुत खूबसूरत गज़लें सुनेंगे और फिर हम तुम में आपकी फरमाइश के साथ। तब तक मैं आपके साथ रहने वाली हूं, तो मेरे साथ बने रहिए। और आपने गाना सुना आशा जी की आवाज़ में, आशा भोसले जी की आवाज़ में, और आज उनका बर्थडे है तो उनको हमारी ओर से बहुत बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देते हैं हम। बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। आप, मुझे लगता है कि बहुत सारे जिसने इसके बारे में बात की होगी, आपने बहुत सारे आशा जी के गाने सुने, लेकिन कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं ना कि कितने भी गाने उनके सुन लो मन नहीं भरता, तो एग्जैक्टली आज ऐसा ही कुछ है। तो उनके गाने में कुछ कुछ आपको सुनाऊंगी, बीच बीच में कुछ और गाने भी हम सुनेंगे, तो बहुत ही खूबसूरत सी शाम आप लोगों के साथ बिताने का इरादा है। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए FM रेनबो पे, और अगर कुछ कहना है तो आपको हमारा नंबर तो पता ही है 8657661071 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और जो भी आपको कहना है वो मुझसे कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये खूबसूरत सा गाना सुनते हैं और फिर मैं आपको मिलती हूँ।

आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी मेरे यानी उर्वशी के साथ, और बहुत ही खूबसूरत गाने जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो एक के बाद एक मैं आपको सुना रही हूँ सिर्फ FM रेनबो पे। बने रहिए हमारे साथ।

कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो सुनते सुनते आपको अपनी बचपन की गलियों में वापस ले जाते हैं। ये कुछ ऐसा ही गाना है मेरे लिए। जब मैं छोटी थी, स्कूल में थी, तब ये गाना बहुत टेलीविजन पे आता था और हम सुनते थे। और इस ना एक गाने का अगर आपने पिक्चराइजेशन देखा हो ना, तो उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चांद है, तो वो देख के मुझे लगता था कि ये हमारा वाला चांद ऐसा क्यों नहीं है। बच्चे है ना, तो इमेजिनेशन कहीं पे भी चली जाती है। तो ये गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है गाना, मुझे डेफिनेटली बताइए। आप है मेरे साथ लव यू जिंदगी में, बहुत ही खूबसूरत गानों के साथ बने रहिए उर्वशी के साथ।

एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम केंद्र, और हम लव यू जिंदगी सुन रहे थे। अभी लव यू जिंदगी को खत्म होने में बस कुछ ही मिनट्स बाकी है, और उसके बाद आप सबसे पहले सुनेंगे प्रादेशिक समाचार 6:05 में, और उसके बाद अंदाजे बयां के साथ मैं आपको मिलूंगी। उसमें आशा जी की कुछ बहुत ही खूबसूरत गज़लें मैंने आपके लिए निकाल के रखी है, क्योंकि अंदाजे बयां का माहौल आपको पता ही है, कुछ शेर, कुछ शायरी, कुछ गज़लें, कुछ नज़में। तो उसी के साथ वो घंटे में मैं आपको मिलूंगी। दो खूबसूरत गाने हैं, उसके बाद आप समाचार सुनेंगे, और उसके बाद फिर से मैं आपको मिलूंगी।

और एक बार फिर से अंदाज़े बयां में मैं उर्वशी आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। शाम जब हो जाती है ना, मतलब 6-6:30 जब बज जाते हैं, तो दिन भर की भाग दौड़ के बाद एक अलग ही मिजाज होता है हम सबका। रोशनी भी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे नरम हो जाती है। जो हम चिल्ला चिल्ला के सुबह बातें करते थे, वो लोग भी अपनी आवाज़ को थोड़ी थाम लेते हैं। दिल को लगता है कि बस कुछ ही देर में अपनों के पास पहुंच जाए और उनके पास थोड़ी बात की जाए। तो आज की शाम कुछ ऐसी ही बातों के नाम जिन्हें कहने के लिए कभी कभी सिर्फ एक शेर काफ़ी हो जाता है। बशीर बद्र साहब बहुत खूबसूरत एक पंक्ति लिखते हैं कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, है ना। तो इसी एहसास के साथ शुरू करते हैं आज का अंदाज़े बयां। और मैंने पहले भी कहा था, बहुत ही खूबसूरत आशा जी की आवाज़ में कुछ गज़लें जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, उनमें से ही एक आपको सुनाती हूँ।

खुशी के साथ। कभी कभी कोई शेर ना हमें अपने बचपन की याद दिलाता है। कभी शायद हमने रेडियो पे सुना था या फिर मम्मी पापा की कोई किताब में पढ़ा था, कभी किसी पुराने दोस्त ने सुनाया हो। और वही शेर कभी कभी हमें याद दिलाता है ऐसे इंसान की जिससे बात तो नहीं होती लेकिन अक्सर याद आ जाती है। कभी कभी किसी शेर का मतलब समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उससे महसूस किया जाए, है ना। तो ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत से शेर, कुछ गज़लें लेके मैं उर्वशी आपके साथ हूँ इन द शो अंदाज़े बयां। और बहुत ही खूबसूरत आशा ताई की एक और गज़ल जो मुझे बहुत पसंद है, सुनिए।

कभी कभी ना एक शेर की खूबसूरती दो पंक्तियों में भी कुछ ऐसी बात कह जाती है जो हम पूरी जिंदगी शब्दों में बयां नहीं कर पाते। अंदाज़े बयां सुन रहे हैं आप मेरे यानी उर्वशी।

अंदाज़-ए-बयां का सफ़र बस यहीं तक था। आप हमारे साथ बने रहे, आपने इतने खूबसूरत गीत सुने उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त होने वाला है हम तुम का, जो आप सभी का भी फेवरेट है मेरी तरह, क्योंकि आप सभी की फरमाइश के गाने उसमें बजते हैं। आपको पता ही है आपको क्या करना है। आपको 8657661071, मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर रही हूँ, 8657661071 पर मैसेज करना है कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हो। ऑलरेडी बहुत ही सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आ चुके हैं, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं ना कि 7 बजे से फरमाइशों का दौर शुरू हो जाता है प्रादेशिक समाचार के बाद। तो सभी लोग फटाफट से अपना जो कहते हैं ना कि फ़ोन लेके बैठते हैं और अपनी फरमाइश मुझे भेजना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी, एक बात बताऊं, सच में बहुत सारे लोगों ने अपनी फरमाइश मुझे भेज भी दी है, जिसमें से कुछ एक तो मैंने अपने एक पेपर जो मैं लेकर बैठती हूँ ना आप सभी की फरमाइश लिखने के लिए, उसके अंदर लिख भी ली है। तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी की फरमाइश मैं आज के शो में शामिल करूँ। लेकिन हमेशा जैसे होता है ना कि सभी की फरमाइश को पूरी कर पाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी फरमाइश आती है, बहुत सारे आपके प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, तो डेफिनेटली सभी तो एक साथ नहीं कर पाते हम। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जितनी हो सके उतनी आप सभी की फरमाइश को मैं शो में ले पाऊं। अंदाज़े बयां में बहुत सारी खूबसूरत गज़लें हमने सुनी और मैं चाहती हूं कि आप सभी मेरे साथ बने रहें हम तुम वाले आवर में भी, क्योंकि उसमें आज मैं कोशिश करने वाली हूं कि आशा जी की ही जो फरमाइश है वो पूरी करूं। ऑफ कोर्स उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, तो इतना तो बनता है। और आप प्रादेशिक समाचार भी सुनेंगे तो उसके बाद डेफिनेटली हम मिलते हैं और बहुत बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ। मैं हूँ उर्वशी, FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं, अभी सुनने वाले हैं हम तुम।

0: तंत्रज्ञान क्षेत्राचा इतिहास यूपीआय शिवाय पूर्ण होणार नसल्याचं प्रतिपादन. वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरच्या 3 टप्प्यांचं प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण. जवाहरलाल नेहरू बंदराला जोडणाऱ्या राज्यातल्या कॉरिडॉरचा समावेश. खेळाडूंना सरकारी क्षेत्रात 5% आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय. आणि मराठा आरक्षण प्रश्नावरचे सर्व मुद्दे सोडवल्याचा सरकारचा दावा. मनोज जरांगे यांनी सकारात्मक भूमिका घेण्याची अपेक्षा. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया रात्री 8:05 आकाशवाणी मुंबईच्या राष्ट्रीय बातमीपत्रात. नमस्कार.
1: नमस्कार. हम तुम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है. हम तुम में मैं शुरुआत से ही आपको आज आपकी फरमाइश के गाने सुनाने की शुरुआत कर रही हूं. और सबसे पहला जो गाना मैं आपको सुना रही हूं वो है विजेंद्र घटोल जी की फरमाइश. क्या आशा जी की आवाज़ में गाना कभी तो नज़र मिलाओ. तो सुनिए, एंजॉय कीजिए और अपनी फरमाइश मुझे भेजते रहिए.

0: come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: हम तुम सुन रहे हैं आप और अभी फरमाइशों का दौर जारी है. दो फरमाइश जो मैं बैक टू बैक बजाने वाली हूँ. एक है पंकज महौड़ जी की फरमाइश है. उनके तीन गाने थे, उसमें से एक मैं तन्हा तन्हा जो रंगीला फिल्म का गाना है वो, और दूसरा अजय सखारे जी की फरमाइश थी सपने में मिलती है कुड़ी मेरी सत्या फिल्म का गाना. तो ये दोनों गाने हम बैक टू बैक सुनेंगे इन दोनों की फरमाइश पर.

0: and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: हेलो और आप सुन रहे हैं हम तुम में आप सभी की फरमाइश के बहुत ही खूबसूरत गाने एक के बाद एक मैं बजा रही हूँ. लेकिन बहुत सारे लोगों के ना मैसेजेस भी आए हैं कि हमारा गाना बजाइए प्लीज़. लेकिन आपको तो पता ही है ना कि सबके गाने बजाना तो बहुत ही मुश्किल है. तो ये हितेंद्र दास जी ने मुझे बहुत अच्छा मैसेज किया है कि एनी सॉन्ग रीड माई नेम प्लीज़. ठीक है हितेंद्र जी, अभी जो दो गाने बजने वाले हैं उसके साथ मैं आपका डेफिनेटली अभी नाम ले ही लिया मैंने. बलकरण वर्मा जी हैं हमारे साथ, भागेश आर पाटिल जी है, पंकज महोड़ जी है, मुकेश कश्यप जी, ध्वनि टोपी वाला. ध्वनि की फरमाइश इजाजत फिल्म का गाना है, लेकिन दो गाने ऑलरेडी मैं अंदाजे बयां में बजा चुकी हूँ ध्वनि, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे अगर आपकी फरमाइश पूरी है होती है तो. बाबा दादर से हैं हमारे साथ, हीरामणि वर्मा, आकांक्षा मनोज सिन्हा, सुरेश काशीनाथ पाटिल, अजय सखारे और उनका पूरा परिवार हमको सुन रहा है. दत्ता केदार पंढरपुर से, मुकेश वालिया देहरादून से, संजय पाटिल, प्रकाश शिंदे, बहुत प्रणव शिंदे, मेहर अरोरा, राकेश माथुर, संजय दर्शन, किशोर नाइक, अशोक पाटिल, बहुत बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन सभी की फरमाइश भी है. लेकिन अभी जो दो गाने मैं बजाने वाली हूँ वो है फिरोज सिंहपुरिया की फरमाइश का गाना है. उन्होंने भी तीन चार ऑप्शन मुझे दिए थे. उनका एक गाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को, और उसके बाद राकेश माथुर जी की फरमाइश पे हम सुनेंगे रोज़ रोज़ आँखों तले. तो चलिए दो बहुत ही खूबसूरत से गाने एंजॉय करते हैं हम तुम में.

ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सुन रहे थे राकेश जी की फरमाइश पे। और अब ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं आपको दो बैक टू बैक गाने सुनाने वाली हूँ, लेकिन उसमें तीन लोगों की फरमाइश पूरी होगी। वो कैसे कि एक गाना है कतरा कतरा जिंदगी, जो अरविंद कुलकर्णी जी ने स्पेशली फरमाइश की थी कि उनको ये गाना सुनना है, और ध्वनि टोपी वाला की फरमाइश थी गोरेगांव से कि उनको इजाज़त फिल्म का कोई भी गाना सुनना है। तो मैंने इजाज़त फिल्म से ये गाना अरविंद जी और ध्वनि की रिक्वेस्ट पे लिया है। और दूसरी प्रकाश शिंदे जी, जो हमारे बहुत रेगुलर लिसनर है, जो हमेशा

0: मैसेज करते हैं। तो प्रकाश जी की फरमाइश में बहुत सारे गाने थे, उसमें से जब दिल मिले यादें फिल्म का जो गाना है वो हम सुनने वाले हैं। तो अभी फटाफट से ये दो गाने सुनते हैं, मिलते हैं, मैं आपको मिलूंगी इन दोनों गानों के बाद।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले, मिले मिले मिले मिले दिल मिले,

हेलो और हम तुम में अब मेरे यानी उर्वशी के जाने का वक्त हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज मुझे इतने सारे मैसेजेस किए। आई एम श्योर कुछ कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा जिनका नाम मैंने नहीं पढ़ा या फिर जिनकी फरमाइश के गाने मैं प्ले नहीं कर पाई, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि अगली बार जब आऊँगी तब आप सभी की फरमाइश के गाने और आप सभी का नाम लेने की पूरी कोशिश करूंगी। अभी जो गाना मैं आप सभी के साथ लास्ट गाना जो अपने शो का मैं बजाने वाली हूँ वो है प्रसन्ना, जिन्होंने नादेर से रिक्वेस्ट किया है सुर फिल्म का गाना दिल में जागी धड़कन। ऐसे बहुत ही पैपी सा खुशनुमा सा गाना है और मुझे इजाज़त दीजिए इस गाने के बाद। इसके बाद आपके साथ जुड़ेंगे इंग्लिश आरजे विथ रॉक विथ जॉक लेके, तो उनको भी सुनिए, उनको भी प्यार दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले शो में जब मुझे मौका मिलेगा आपसे बात करने का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है, इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच

0: बनाना। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
0: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
0: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
0: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
0: साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
0: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के

0: नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
1: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 273 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार, वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक रिपोर्ट।
3: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
4: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो 4 लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
0: बम्बई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्री

मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरे अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए दो बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्राओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव और पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।

जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में, हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM की लहरों पर। मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। साहब, जिंदगी जो है वो एक किताब है और हर सफ़ पर लिखा होता है एक रिश्ता, और उस कभी दोस्ती का रंग होता है उसमें, और कभी मोहब्बत का जादू होता है, और कभी खामोश वादियों में बिखरी हुई कुछ यादें होती हैं। वैसे मोहब्बत का रिश्ता तो वो है जो दिल की हर धड़कन में बसता है, उसकी एक मुस्कान में हो, वो नज़रों का मिलना हो, या फिर सारी मानो सारी कायनात जो है वो थम जाती है नज़र मिलने पर। और साहब, जब मोहब्बत होती है तो हर गली हर चौराहे उसकी बातें होती हैं, और आज हम बात करेंगे उन रिश्तों की जो हमें जीने का मकसद देते हैं। बहरहाल, एक और कलाम जो है वो आपकी नज़र कर रहा हूँ, बेहद खूबसूरत है यकीन मानिए, और इसके बाद कुछ और बातें होंगी आपके अपने दिल की।

रात की इस खामोशी में जब सितारे चुपके से बातें करते हैं ना, तब दिल में एक तड़प जगती है, और वो तड़प अपने किसी ख़ास की हो और जिसके बिना ये रात अधूरी सी लगती हो। अजब रिश्तों की मिठास तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दो दिल एक दूसरे के लिए बेकरार हो जाए। यानी वो चांद जो मेरे आंगन से दिखता है ना, क्या वो भी तुम्हारी खिड़की से झांकता है? और अगर हाँ, तो क्या तुम भी उस चांद में मुझे ढूंढते हो? वैसे इस सवाल का जवाब तो आपके दिल में भी होगा, पर हम तो बस इतना कहना चाहेंगे कि रिश्ते जो होते हैं बड़ी खूबसूरत होते हैं और हर रात को एक मुलाकात में बदल देते हैं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

जिगर मुरादेबाजी साहब कहते हैं कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और साहब प्यार की राहें, राहों में कांटे भी होते हैं, मगर उन कांटों में भी एक सुकून है जो दिल से दिल मिलता है, तो हर दर्द, हर गम, हर गीत बन जाता है। और आज की इस महफिल में हम आपके लिए लाए हैं ऐसी ही कुछ गज़लें जो आपके दिल के तार छेड़ देंगी। बहरहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल, प्रोग्राम चल रहा है रंग महफिल, और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: साहब, इस वक्त हुआ है 11:37। रेनबो इंडिया 102.6 FM की लहरों पर सवार हैं आप और रंगे महफिल की दुनिया में, और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। शायर कहता है कि तेरे बिना ये रात अधूरी सी लगती है, तेरे बिना ये रात अधूरी सी लगती है, तेरी बातों के बिना हर बात फीकी सी लगती है। और साहब, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बिना हर पल सूना सा लगता है, और जब वो पास होते हैं तो मानो सारी दुनिया रंगों से भर जाती है। तो आज की इस रात में अपने उस खास इंसान को याद कीजिए जो हमारी गज़लें आपके दिल को सुकून दे रही हैं, और उन्हें याद करके खुद भी सुकून के लम्हे अता कीजिए।

रात का आलम कुछ यूं है जैसे कोई पुरानी किताब खुली हो और हर पन्ने से कोई याद बिखर रही हो। अजाब यादें हैं, वो खजाना है जो कभी पुराना नहीं होता। कभी किसी की हंसी हो या कभी किसी की बात, और कभी वो अनकहा लम्हा जो बस दिल में बसता है। और जब ऐसी यादें गज़लों के साथ जुड़ जाएं तो महफिल बन जाती है। रंग महफिल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है, क्योंकि अभी वक्त और है हमारे पास, और मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। ये कलाम आपके लिए नज़र कर रहा हूँ और यकीनन आपको पसंद आएगा।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: और जावा आकाशवाणी के रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 फ्रीक्वेंसी पर, और प्रोग्राम चल रहा है रंग महफिल। इस वक्त खुर्शीद आपके साथ है और अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है, और जाते जाते हमेशा की तरह सिर्फ यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखें और उनका भी ख्याल रखें जो आपका बेहद बेहद ख्याल रखते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।

आकाशवाणी रेनबो पर हमारे सभी श्रोताओं को हमारा इस एक घंटे का नया नमस्कार। और अब प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कल मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मणिपुर के एक दिवसीय दौरे पर इम्फाल पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता में भी शामिल होंगे। रूस ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत की ओर से किए जाने वाले किसी भी शांति प्रयास का वो स्वागत करेगा। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की मौजूदगी में शानदार विदाई दी गई। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में कल भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी रेनबो पर करते हैं हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत और आपको ले चलते हैं हमारे नए सफर पर जिसका नाम है जीरो आर शो।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब जायजा लेते हैं इस घंटे की खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कल मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मणिपुर के एक दिवसीय दौरे पर इम्फाल पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता में भी शामिल होंगे। रूस ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत की ओर से किए जाने वाले किसी भी शांति प्रयास का वह स्वागत करेगा। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के

विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की मौजूदगी में शानदार विदाई दी गई। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में कल भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो पर अब हम अपनी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं सुहानी रात के सफर पर। जी हाँ, कार्यक्रम का नाम है सुहानी रात।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट

मेरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कल मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मणिपुर के एक दिवसीय दौरे पर इम्फाल पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता में भी शामिल होंगे। रूस ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत की ओर से किए जाने वाले किसी भी शांति प्रयास का वह स्वागत करेगा। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमरीका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की मौजूदगी में शानदार विदाई दी गई। और अहमदाबाद के विश्व पैरा तीरंदाजी में कल भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबू पर आइए अब सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जिन्हें भुलाया जाना बहुत ही नामुमकिन है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कल मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मणिपुर के एक दिवसीय दौरे पर इम्फाल पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे। रूस ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत की ओर से किए जाने वाले किसी भी शांति प्रयास का वह स्वागत करेगा। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की मौजूदगी में शानदार विदाई दी गई और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में कल भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। कहा, संकट के समय भारत हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 की शुरुआत करेगा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। रूस ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत की ओर से किए जाने वाले किसी भी शांति प्रयास का वह स्वागत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता में भी शामिल होंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि उनका देश अमेरिका पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से कदम उठाएगा। एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की मौजूदगी में शानदार विदाई दी गई और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में कल भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम का, सारेगामा। तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: si Terry बोली
1: हाय
0: तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।